जावै दूरा। ऐसे चुन प्रताप ते देव नपड़ प्रताप तीन लोग जाय जाय कर रे राम साहब दूरा। सगल द्वार को छाड़ के कहो त्वारो द्वार बाह गह की लाज सुन गोविंदा स्वर दोहरा। राज करेगा खालसा आकी रह न को ख्वार होए स मिलेंगे बचे सुन दो दोहरा। उठ के सबा मलेश की कर उड़ा पासार नंका वाली बंदे का नह कलंक अवतार। चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुक्ते सुहम भव सुभम सदा सतयुग ते दुकाल प्रणाशी दयाल स्वरूप सदा सगे अपंगम होते देख गुप्त त्रिपत्र अजनान पुर गोविंद सिंह।

सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अचिंज तेज मानी है सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिए न राग रंग रूप है न रोग राग रेग है अधोग दाग तक है अभूत ब्रह्म भेक है न तात मात जात है न पाद चिहन वर्ण है अदेक सेक भेक है सदीव विश्ववर्ण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्ववर्ण है जिमी जमान के विके सदीव करम भरम है अद्वेक है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्वठोर में विशेख हान मानिए न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण यो कुरान नीत नीत कह बतावई न कर्म में न धर्म में न भरम में बताइए अगंज आद देव है कहो सो कैसे पाइये जिमी जमान के बिगे समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाट है न घाट बाट होत है नहान है न बान है समान रूप जानिए मकीन यो मकान अप्रमान तेज मानिए न देह है न गे है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न दात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न सात है न दुख है न दाग है न द्वैख है न देह है न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जज है न

न सीत है न सोच है न ग्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है।

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत फेक है बलिय रूप राग रंग है न द्वैक है न भेद है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न छिद्र चिन्ह वर्ण है बेअंत है अनंत तेज मजानी है अभूम बीज है सदा छिज तेज मानी है न आद है न व्याद है अगाध रूप लेखी है दोख है अदाग है अच्छे प्रताप देखी है न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ ओकार है न आद है न गाद है।

रूप राग नारेक रंग न जन्म मरण विहीन आदनाद अगाध वृक सोधरम करम प्रवीण जंत्र मंत्र तंत्र जाको आद बुरग अपार हस्त कीट बिके बजे सब ठौर में निर्धार जात पात ना तात जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखे रम्यो जय।

सन कौसन के सनंदन पावही ना से जाच किन्नर मच मास मृग मृग पार नीत नीत पुकार ही शिव सक्रो मुख चार सर्व सबत पतार के दर जाप ही जह जाप आद देव गाद तेजा नाद मुरत अताप जंत्र मंत्र नावै कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहे विराज राज राज प्रवीन जच गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रियन माहे वैष्णंगे बिखे विराज शूद्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भी लभी कर ब्रह्म से एक स्वरूप रात दिवस न मद

पुष्ट हर नंग पुष्ट कर नंग सर्व के प्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विश्वभर्ता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देव खंड भूम का जले थले मह जपद जाप मंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देव अपार सही पद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता श्रव मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोटेन्द्र उपेन्द्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद फेवना पावई शिव रुद्र ओम मुख चार कोट इंद्र उपेन्द्र व्यास।

दुर्जन दल दंडन असुर बिहंडन दोष निगंदन आत प्रत्यय चरा सुर मारण बद दो धारण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय होसी मै का सुर मर्दन रमक बर्दन छत्र छिते आसुरी बिहंडन दुष्ट निगंदन पुष्ट उदंडन रूप ते चंडा सुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र बदन।

चंडासुर चंडन मुंड मुंडन खंड अखंडन खून किते दाम नीत मंगन ध्वजा परंकन फणी फुंकारण जोध जिते सरदार विवर खण दुष्ट प्रकार खण पुष्ट प्रहार खण दुष्ट मथे जय जय हो सीमा का सुर मर्दन भूमा का सल उर्दा दे दामनी प्रहासन सुक्षम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ कते रक्ता सुर आचन जोत प्रमाचन हृदय नराचन धरम वृते श्रोणंत अचिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय हो सीमा का सुर मर्दन पाप विनाशन धरम करे अघ ओग निवारण दुष्ट प्रचारण श्रेष्ठ उबारण शुद्ध मते भणियर भुंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सहते सन्नाहन अर्थ प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय हो सीमा का सुर मर्दन भूमा का सपताल जलंग चाचर चमकारण चिच्छुर हारण धूम्ब धुंगारण द्रप मते दाढ़ विवृतंते जोग जयंते मरुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय हो सीमा का सुर मर्दन परम विनाशन धरम धुजे घुंगुरु गमंगण ससृज मंगण फणियर फुंकारण धरम धुजे अष्टाट प्रहासन सृष्ट निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुध सन्नाहे अगमता हे एक वृते जय जय हो सीमा का सुर मर्दन आदि कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन वृष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण वितल तले जय जय होसी सब ठौर निवासन बाय पताल आकाशन ले संकटे निवारण नदम उदाहरण तेज प्रकर खण तुंद दुख दहंती ज्वाल जयंती आद नाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय हुसी सत्र प्रकरखण आद अनिल अगाध अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कथा कुठा।

वी प्रकार खंड सर्वर वर खंड दोष प्रदर खंड पितल दले अष्टायत बाहन बोल निबाहन संत बनाहन गुड़ गते जय जय ओ सीमा का मर्दन आदा नाथ अगाध वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रदक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट प्रदाहे अर्दल गाहे दुख हरे।

रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दान वर्धन बिडाल वधे सरदार विपरखण दुर्जन धरखण दुल मरखण धरम दुजे धूमराज विदुंसन सुण तो चुनसन सुम।

सत्र मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप विचल पार जानी न जाए जह रूप रेख कहे बास दास कहे कौन भेग कहे नाम तास है कवन जात जय सत्र मित्र नहीं पुत्र ब्रात करुणा निदान कारण स्वरूप जय चक्र चिहन नहीं रंग रूप जय खेत भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की कर्तपाल उर्दंग बिरह सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिज दाग जल थल मही पवंतन दुरंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत पायु न जाय जह पैर पार दीनान दुख दहता उदार कई गोट इंद्र जह पान हार कई गोट रुद्र चुकिया।

दीनन की प्रतपाल करे नित संतु बालक नीमन गारे बच पशु नग नाग नरा देव सर्व समय सबको प्रतपारे फूकत है जल मैं धल मैं बल मैं कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानित दुखन देखत है पर देत न हारे दाहत है दुख दुखन को दल दुजन के पल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड बहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभारे पार न पाए सके पदमा पद भेद कते बेदो चारे रोज ही राज बिलोकत राज करो गुरुहान की रोज नटारे कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख भवान बनाए देव देव कपे अंग बेव न बेव लख्यो ब्रह्म शिव ब्रह्माए वेद पुराण कते कुरान हसे।

दयाल दया कर श्री पद सुंदर श्री पद महापत ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न वह देह वीर स्नेह सबोधन नेह विरक्त अगेह अच्छा है। जान को देत जमीन को देत जमान को दे है। काहे को डोलत है तुम्हारे सुंदर श्री।

अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासत्रन के साल है दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया है कटैया जय मजाल है युद्ध के जतैया विरुद्ध

तेज हूँ को तार है के राज सी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के साधना किसान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छा अविनाशी है काम को निंदा है के खूबी को देहंदा है गनीमन को निंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूँ के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को भोगत है के वृद्धता की बासी है जो कहूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ के घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सार है ज्ञान को बचैया है मान को

विश्व को भरण है गे आपदा को हरण है गे सुख को करण है गे तेज को प्रकाश है पाई न बार बार वार हूंगो पार जागो की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय गावे हब्बसी हल विद्या पूर्वी न बार पावे सतय नाश है देवन को देव महादेव हुंग देव है निरंजन अभेव ना तदव अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूम के भुजैया है मोहैया महाबाल के राजन के राजा महाराज हूँ के साजा महाजोग हूँ के जोग है धरैया द्रुम चाल के कामना के कर है के बुद्धता को हार है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत चाज कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप कालिंद्री के कूल के हंस निश सी हरु मही रसी हुसन बाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सूरसी सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपा सी चंदेरी गोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी हूल के फटक सी के लाज कमाऊ गढ़ कांसीपुर सी ससी सुरंगाबाद नी के सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा ने रहंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चांदगढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार बकान सी बुलंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी सके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है बकरी गंधारी गोरे कखरी गिरदे।

हर कीरत हमरी रह रास रहाव, हर जन के वड भाग वडेरे, जन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मलै त्रपतास है, मल संगत गुण प्रगास, जन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भाग हीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, ध्रग जीवै ध्रग जीवास, जिन हर जिन सतगुर संगत

Thank you.
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की जान करदास, पर की जय कृपा पासा, की जय करदास, मोहे मन खराम बचन भी करे चौ करी, बचन मन अगन सर परी, नाम नाम बचन प्रभु मन ध्यान, बचन बचन प्रभु सुने पहचान, बचन सब लग लग की मामुली, पर सब लग लग की महाकाल लगो आज, मारो माल लगो, मैं की मार प्रथम दरो भगवत को ध्यान नो भगवन बहुत करुण कबता भजन नो कबता

तन जड़ाई अपने लहा सो सजन। कहिंदे अपनी जिंद वेच के सावे मुल अपने जीवन दे मुल जिंदगी दे मुल। कहिंदे कोई खंभ मिलदे होण जिहड़े खंभ मैनूं धन कलगी धर पातशाह जी दे चरणां विच लै जाण ते मैं अपना आप बेच के भी वह खंभ खरीद लवां, खंभ खरीद लवां, शरीर नूं लवां।

तेरे करने सर्व विचार सत्ता तेरा अमर सत्ता दीवान सत्ता तेरा मुस्ता फरमान सत्ता तेरा कर्म सत्ता निशान सच्चे तुदा खे लख करोड़ सच्चे

होली चित्तेंद्र सुख नदरी हेठ चलांदा पे देवड़ियां पे ही क्रम कराएंदा उड़ा और में दिन सिर से तंदे लांदा नदर पुटी जकर सुल्ताना काव कराएंदा धर्मंगल पेकना पाएंदा।